ekska if em kawa ulengo em tenuguchu aungo program go sa uzi che ka ke radho da go si de kawa nehe e kawa tibin 5 ta minute da kawe tu ka kai si bang ba tenuguchu aungo go lang ji cha ngwe sa go ji se ka ke radho ke agu si de kanu se tenuguchu aungo go lang go sa ji ma ka ya da mo si de kwang kan go su pa ki se minute mo ngang ba ole ngwe ये तेनकुन हु आ चितवा हंकुए सा कविसिसि केयांग कोंका के वलांग जिचा कुसिदे कलुसि कवे तो कैसि मतेन गुचु औंगो वलांग हंकुए सा गेन चिमन का के प्रखम नो कोंगा कुइ नै देगे क्वांग सेवा मनि टेम तेन चोंग ला ता अकुसिदे वलांग जिचा क्वां देगे कावा खजुन ओला ता पंग गुसिदे चिमा वलांग नो कोंगा कुइ अले क्वा प्रखम के मोंगो मसो तेन दुतो मो वलांग

का एफ एम का वो ओलंगा एम तने कुछ आऊंगा प्रोग्राम को सब जिसे का के रादू के कभी तू का खाई से पंगा कोई खाई को रादू के नंबरों या वो नितन सेवा पेन ने खा एफ एम अनुम तो कोई आऊंगा वो लंग जिस चंगो सब जिसे का के आ प्रोग्राम को कोंगा के कभी तू का खाई से पंगा कोई से वो लंग जिस चंग तेरे को मां तमोई कोई से करूं से कभी तू का खाई से तेरे कुछ आऊंगा वो लंग जिस चंग हमको ऐसा कोई जिसे का के रादू वे सिरे कवे तो कई से पंगम तन कुछ आउंगा वोलंग हमको ऐसा जिम का ता कोई सिरे कवा वोलंग नवे तन चोंगा के माउंगा मासो तन दुटो उंगा वोलंग